0: I'm Shivani.
1: Hi everyone, I am Samarth, and this is the first time Shivani and me are working for Crooners with a team, with the awesome team, on an awesome project, and the video that you just saw.
0: And we absolutely enjoyed working with them.
2: हम ऐसा एंसर बुलवाते हैं. ओके, नाउ ऑन द चैनल यू विल फाइंड लॉट ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स लाइक दिस वन यू जस्ट हर्ड. तो और गाने सुनने के लिए करिए यार लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब करिए.
1: रेड बटन
0: आई शेयर अ लॉट, गो ऑन शेयर.
1: थैंक यू एवरीवन.
3: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज़.

छैन यार। शहर में भीड़ छ मान्छे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बात मा ठूलो समेला। यस यस।